0: सेम कोने शुरू है यंग द रिरी जी जी सिन सिन बदीनी कावे जोंकी लुजु छेमो रिजे जाजु छुदी
1: संगन नम छो तंग न जुन नम गु ने सु थु जे था थु चिन गम लि न यंग नम बिन छे था छो बु छो म न्याम जुन छि बे थु जे या छे जि रे दवा हक बा थु द ल सा था थु चिन गम लि न तन निम दो जुन बे न ब दे थे वे या छु जे थे वे था गान जुन गे छे दो माना जु मि था मि वा गे जवा था जे दोंग दि ने ले थे वे या सब सिम बे न वा रि स्टोल

0: ये दंग को मार जिला क्यों चुए मार जेबा कंडा निम्सी के थोड़ी ये गुलिया डंडे या दी कैसे मशीन थोंड दो बुदू
1: ताज़ा जेट तबुजू सोल या जी अंचा भी गोजी सिम्चे गोजी ठेंचे के कब लिया ना सुई किम्ता ना बस सुई ता सिंजांग के आने बो या जी चिंगू चेंजे अन्य रंग ये सिम कम दे कंडे ये मी मिंग ठेंचे चुप्सा ठेंचे दागोरे चुदोंगल ता दिन ने लेंगे तंगी दी ता दूसरा बा होता का दी चेंजे जो लोनिया जी लिया जी तोनाओ तगुंग दो इस लगी दी ना लो लिया बुगु की जी जाओ जाओ जिन्हें दिन जे चोदो दो ता दी ना लो ने बुगु की सिम कम दिन जे जी गम जा चेवो सिनान चेवो सिम से चेवो दिन जे की सिम कम चाजों लो तो यो ने की लोनिया दी ने किम ना नम सो या गुन जो शु चे लोनिया दी क्यू चे पुचु चे सिम कम लिया क्यू लिन ना तो बे जो वो दिन जे जी शु यी ना ना चे पुचु चे यी ने दे जी सिम चे की वंग की कालो दी क्यू लिया चे ले ना चे सु सु शंग नी के जी सिम कम दी लिया चुन जी ना तो बे मेन दिन शु यी
0: ता जा जी ता ना जो ने सु तां चे बी ने ना जो किम दा यी ने जी पुचु यी ने जी वो लिया जी मा लो लो चे
1: 是吧？春节前夕，俺们什么时候要过春节？俺们俺老婆谈天这么一把，什么时候个头你来个地主边？开心不是多啊？
0: 嗯嗯嗯，
1: 他相信。今年西北的人好像去就过去吧？俺们去退休一年的，俺们这老师呢，阿里屋里是单单，我也进屋去了，是说那个是吧？其实我进屋去，心里想给特别的一年的，穷穷俺的心坎，他等俺们这几辈心坎的心里难呀。俺们是我俩念头老早是那，既然给俺们这个不住的一年的，大概能行给了特别是我去。
0: 修行的，但是没得特别个别样的去的，屋里呀，家这洗几颗粒粒呀天，今年呢，这屋里妈妈六七级，家这洗几股呢？今年家这厨的那落里呀，屋里妈可怜可怜的呀，妈单切，顶这是听我卡些几切币呢？俺那去苏北那落里的，俺们这切币王子的一年的，洗绿切土边马切，他做给新的一年的这，洗绿土单土土。头上，等俺那从来开切币呢，不住草里呀，让大给三六七月币呢，是说让我春节七土边。
1: 三六七月饼呢，来开的切饼呢，来几点不就用过是吧？就像俺所隔壁一个那是，家中吃呀个，那不一年是，差不多四岁包四岁个，那当里呀细节四岁，春节前头别个是外个。他上学的当然岁多，对切西饼呢，不住吃个讲这的，养你肯定是吃不起那的，旁边不住的呀，江北走啊的呀，天面是阴不住吃，一百土先是就过呀的，看见不得下了。他上学，当然从一九天这趟开的小别，就是那老了呀，听到邻居给包了呀，他去引起没。
0: 满别单呀，一年是田里呀，马热是呀，就我们一把，不过去深坎的西路营养，我里下去，你一个里呀，即不生他们田边安的，看得较特别个是外运。
1: 是了，是外运那个呢，最近他那么最近那的西路个深坎集团，不就是一年的落地拍片个安的，一个里呀，东边切特别是我听这些修行的，那是金餐厅呀，地鸡汤，田边安的，东边切特别面对修行，
0: 唐山市。